clásico europea, Los Acosa. को संख्या में गांवपालिका पास नेपका गांव में गैराती खसुको पहिरोले चंखेली पास डाफे स्थित आधारभूत विद्यालय भवन में क्षति पुर्याएको छ। 81 में पानी परेपछि खसुको पहिरोले विद्यालय भवन सहित खेती योग्य जग्गा र गोठमा पनि क्षति पुर्याएको चंखेली पासका स्थानीय बासिन्दा सक्क

0: अनिवार्य रूपमा सवारी साधन रोकौं र पैदल यात्रीलाई बाटो काट्न दिऊं।
1: सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल प्रयोग नगरौं। बाल बालिकालाई सड़क नियम सिकाऊ र सुरक्षित स्थानमा हिँड्न प्रेरित गरौं।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

सम्मा भेको का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैशबैक तथा शेयर्स ऑन गिफ्ट वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैजिक डिशवॉशर में वॉशिंग टैबलेट्स एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन फ्री स्कैनिंग ओवन और प्रेशर कुकर नागरिकता मात्र भाई पुग्छ समय EMI में खरीद कर सकता।

सूचना संगीत मनोरंजन को अटूट साहिनी यो हो रेडियो साहिनी 99.8 मेगाहर्ट्ज।

0: का गड़ी इधर भी आ गया।
1: दौलत
2: कौन?
0: पता नहीं, दौलती की गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

0: ये रख लो पहन ले।
1: क्या कर रही है तरपी आ गया?
0: दौलत
1: कौन?
0: पता नहीं तरपी की गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

मैं हिकत की बेचैन से होके भी गुजरने लगे इश्क जो जरा सखा वो बढ़ गए तेरा फितूर जब से चढ़ गए।

0: इसे क्या कर रही है तेरे पे आके?
1: पावलट
0: कौन?
1: पता नहीं, दारूपी की गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
0: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।
1: चल चल चल चल चल।

36 बजेसम्म समय नयन महिला पतञ्जली योग समिति चितवन महानगर योग समिति महिला महानगर योग समिति चितवन आयोजक भरतपुर महानगरपालिका अठार